अजामल दा पिता सोचदा है अजामल वड्डा होवे, पढ़ लिख जावे ते मेरी जगह राजे दे दरबार विच ए भी कथा करया करे अते जिन्ना इज्जत मान मेरा है इस तू वध इज्जत मान इस नूं मिले। अजामल कुछ वड्डा होया, अजामल दा पिता अजामल नूं पढ़न वास्ते पाठशाला विच लै गया। पहले दिन अजामल पाठशाला पहुंचिया, अजामल नूं पढ़ाण वाला गुरु अजकल दे अध्यापक कहिंदे ने, मास्टर कहिंदे ने, प्रोफेसर कहिंदे ने, पर पहलां लोग विद्या देण वाले नूं गुरु कहा करदे सन ते पूरा मान इज्जत देंदे सन। अजामल दे गुरु ने कहा, अजामल जदों मेरे कोल पढ़न वास्ते आवे तां इक गल याद रखी, शहर दे बाहरों आना है, बाजार विचों लंघ के तू मेरे कोल पढ़न वास्ते नहीं आना। अजामल ने कहा, सतवचन। अजामल जदों पढ़न वास्ते जांदा है तां शहर दे बाहरों आंदा है, पढ़ाई करके वापस घर जान लगदा है ते तां वी शहर दे बाहरों। अजामल जदों तक गुरु दा कहना मनदा रहा, सारिया विद्यार्थियों नालों सियाणा, हुशियार, पढ़ाई विच तेज, शरीर भी चंगा, गुरु भी खुश, पिता भी खुश, अजामल भी खुश, पर ए खुशी बहुत ही दिन ना चली। एक दिन अजामल मन विच सोचदा है, ऐ मना सारी दुनिया शहर विच वसदी, पर मैनू गुरु ने क्यों रोके है कि अजामल शहर दे विचों लंघ के बाजार

जो गुरु कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। भाई जो गुरु कहंदा है ओ मनो। जे गुरु रोकदा है किसे पासे तो रुक जाओ, क्योंकि गुरु हमेशा भला सोचदा है। पर अजामल दा मन अज वस विच ना रहा। अजामल कहन लगा केड़ा गुरु नु पता लगना है, अज बाजार विच चलांगा। अजामल ने करों तैयारी की थी, करों तुर पिया। अजामल शहर च दाखिल होया, बाजार विच वड़िया। ए बाजार सी वेसवावां दा। कलावती नाम दे एक वेसवा हार श्रृंगार करके बैठी है। अजामल ने उस वेसवा नु देखिया, तुर गया। पर उदा मन उस वेसवा वाल रह गया। पाठशाला पहुंचे है, पर अजामल दा मन अज पढ़ाई विच नहीं लगा। पढ़ाई पूरी हुई, अजामल वापस तुरिया। वापस फिर उसे बाजार विचों निकलिया जिड़ा वेसवावां दा बाजार सी। ते कलावती नाम दी वेसवा ओ हाली भी बैठी है। उस वेसवा नु देख के अजामल फिर वापस अपने घर परत आया। हुण रोज दा काम बन गया वेसवावां दे बाजार विचों आना, वेसवावां दे बाजार विचों जाना। ते हौली हौली ए अजामल कलावती नाम दी वेसवा कोल जान लग पिया। ता मन जिहड़ा सी पढ़ाई वल्लों हट गया। शरीर भी हुण तंदुरुस्त ना रहा। पढ़ाई विच भी पिछे। गुरु नूं पता लग गया कि अजामल जिहड़ा है

देख अजामल तू राज पंडित है, तू लोकां नूं उपदेश देना है, जे तू माड़े काम करेगा तो लोकां नूं किवें समझावेगा।

जंगल चला गया, दूसरे पास से कलावती वेसवा जेड़ी अजामल दी घरवाली बन चुकी, घर दे बाहर खलोती है। कुछ महात्मा महापुरुष उस पास से आ निकले। कलावती ने उन साधुआं नू संता नू अपने घर बिठा लिया। आप बाहर खड़ी होके अजामल दी उड़ी करन लगी। थोड़ी देर बाद अजामल आया, चादर मोढ़े ते मारी। कुछ पंछी ने चादर विच चादर खून दे नाल भरी हुई। कलावती कहन लगी अजामल, ए जड़ी पापां दी पंड लियांदी है इहनू बाहर रख दिओ। घर संत आए ने, सारी उम्र पाप कमाए ने, किसे दा कहना नहीं मन्निया। कोई चंगे कर्म कीते ने किसे वेले दे, कि अज महापुरश साडे घर आए ने। आओ संतां दी शरण पै चलीए, हो सकदा है।

अजामल, कलावती दे नाल धर्मशाला गुरुद्वारे पहुंचे। महापुरुषां नूं बेनती कीती नाम रखण वास्ते, गुरुद्वारे जाए कै गुरमुख नाओ नारायण कहया। जदों ये गुरुद्वारे गए, गुरु दे द्वारे गए, ते महापुरुषां ने अजामल दे सतवें पुत्र दा नाम नारायण रखिया, गुरमुख नाओ नारायण कहया। गुरमुखां ने महापुरुषां ने कहा, अजामल तेरे पुत्र दा नाम असी नारायण रखिया है, इस नूं तुसी हुण नारायण कहना है। भाई गुरदास जी बयान।

जमदूत वेख पुत नारायण बोले शया। जमदूता नू देख के डर गया, पुत्र भुल गया, ते उची सारी कहंदा नारायण बचा। ते नारायण परमेश्वर दा नाम है, सच्चे मनो

जमगण मारे हरजना गया सुरग जमडंड ना सहया। जमगणा नू देवत्या ने हरी दे जना ने पिछा कर दिता। उस पापी अजामल नू बैबान विच बठा के ओ हरी दे जन देवते अजामल नू सचखंड लै गए। जमा दे डंड तू जमा दी मार तू ओ पापी अजामल बच गया। क्यों बच गया? नाए लए दुख डेरा टहया।

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुर उपदेश अते उदेश नू उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारयां नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गर्भ गंभीरा शब्द गुरपीरा गर्भ गंभीरा बिन शब्द जग भौराना।

चरण गुरु मीठे बड़े पाग देवे परमेश्वर, बड़े पाग देवे परमेश्वर। कोट पला

भी ऐसा होना चाहिदा है जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जावे। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे ते साई फरमान करदे हन कि ऐसा शाह इको इक परमात्मा है जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा। ऐसे परमात्मा बारे ऐसे शाह बारे साई फरमान कर रहे हैं।

परमेश्वर कहायो पाठ अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करते हैं लिखते ने ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लैके प्रगट होए उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलाधार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक साहब नमस्कार करते हैं एक गल लिखी।

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दास जिन्हों लिखी उसे नू मिलनी, पर मिली भी

कोई समागम ना होवे मैं किस तरह जा सकती अपने गृहस्थ जीवन विच। जे आपां सुखी वसना है तां इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना पवेगा। वड्डियां दी आग्या, वड्डियां दा कहना मनना फर्ज बनदा है, पर नाल इक गल इह भी है कि वड्डियां नूं भी छोटियां दी भावनावां दा ख्याल रखना चाहिए। दोनों पासे प्यार होवे तां जीवन दा आनंद कुछ होर हुंदा है। अमरदास कहन लगे, बेटा तेरे सस सहुरे नूं मैं पुछ लैना, तेरे पति कोलों इजाजत भी मैं लै लवांगा, ते तुहाडे पिता गुरु अंगद साहब दे चरणां ते सिर रख के मैं उन्हां नूं मना लवांगा कि बीबी अमर नूं मैं लै के आया, क्योंकि मैं गुरु वाला बनना। इस तरह अमरदास, जिन्हां नूं आपां हुण गुरु अमरदास कहने हैं, अपने पिंड तों खडूर साहब चल पए। जद खडूर साहब पहुंचे, गुरु अंगद साहब संगतां दे नाल बैठे हुए ने, दूरों तक लिया कि साडा कुड़म अमरदास आ रहे हैं, क्योंकि भरा दा भरा भी कुड़म ही मनिया जाता है। गुरु अंगद साहब ने आसन दिता कि साडे कुड़म दा भरा कोई भी कुड़म ही लगा, कुड़म आया। जद सिंघासन दिता बैठन वास्ते, ता अमरदास ने हाथ जोड़ के चरणा ते मत्था टेकिया ते चरणा दे कोल ही बैठ गए। कहन लगे, पातशाह मैं कुड़म बन के नहीं आया, सेवक बन के आया। अपने चरणा विच देओ जगह, सिख बनाओ, अपना सेवक बना लो। उमर अमरदास दी ओ है जिन्हों आप कहने बुढ़ेपा। उस उमर विच आके सेवा की थी, लंगर च भांडे मांजे, लंगर पकाया, झाड़ू फेरिया और कठिन सेवा लई रोज सवेरे कुछ मील चल के ब्यासा दरिया ते जांदे ने, पानी दी गागर भर के फिर वापस आके पैदल